0: स्टूडेंट्स लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। बताता हूँ, थोड़ा पेशेंस रखिए। जी हाँ, वेक काउंटी स्कूल बोर्ड ने आज दोपहर छात्रों के लिए एक बहुत ही बढ़िया फैसला सुनाया है। फैसला क्या है ये बताने जा रहा हूँ। अरे रुको यार, बता रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में खेलकूद और फिटनेस सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नए विशेष बजट को आज आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। इससे स्कूल के ग्राउंड्स को अपग्रेड किया जाएगा और बच्चों को नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिलेंगे। यार, ग्राउंड को अगर अपग्रेड करते हैं, नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स मिलते हैं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, जिससे जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में करियर करना चाहते हैं उनका हौसला बढ़ेगा एंड स्पोर्ट्स को भी उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना स्टडी को मिलता है। फिटनेस अच्छी रहती है एंड जो कहते हैं ना, वो मज़ा ही अलग होता है। बचपन में आपको भी याद होगा ना, स्पोर्ट्स के लेक्चर का, आई मीन टू से स्कूल में पीरियड का हम कितना इंतजार करते थे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM, HD4 101.9 FM, 1490 AM, रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।

बचपन में जो स्पोर्ट्स का पीरियड रहता था, सच में हम तो पीरियड कहते थे हमारे स्कूल के टाइम में, कितना मजा आता था यार। वो दिन ही अलग दिन थे, है ना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट, 7 से 10 हमारा ये शो चलता है। जी हाँ, एंड अगली खबर है नॉर्थ कैरोलिना की मैं बात करूंगा। मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम विभाग ने आज सेंट्रल एनसी के लिए भीषण गर्मी और उमस का कड़ा अलर्ट जारी किया है। आज दोपहर में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की वजह से हीट एडवाइजरी लागू करी है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि वीकेंड आउटडोर एक्टिविटीज के दौरान पानी की बोतल हमेशा साथ रखें और खुद को हाइड्रेटेड रखें। ये रखना काफ़ी ज़रूरी है। आप जितने मात्रा में पानी पियेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, एंड एक बॉटल तो साथ में कैरी करना ही है पानी की। सुनाने जा रहा हूँ आपको अगला एक गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: एंजॉय किया आपने गाना। अगली जो खबर है वो आखिरी हिस्से की खबर रहने वाली है हमारे न्यूज रिपोर्ट के सेगमेंट की। तो अगली खबर है कि शनिवार की शाम होते ही रैली के ग्लेनवुड साउथ और ब्रियर क्रिक जैसे नाइट लाइफ हॉटस्पॉट पर युवाओं के हुड़दंग को रोकने के लिए पुलिस ने आज शाम से ही गश्त बढ़ा दी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पुलिस की विशेष रियल टाइम क्राइम यूनिट सोशल मीडिया पर भी ऐसी नज़र रख के है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे जमावड़ा आने वाला है, ये सब चीज़ों का ख्याल हमारी पुलिस कर रही है। एंड छोटे से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा है ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। हमारी पुलिस कितना करती है ना हमारे लिए, एक सैल्यूट तो बनता है उनके लिए। एंजॉय करते हैं ये अगला गाना। एंड मैं तो पूछना भूल ही गया, कैसे चल रही है आपकी वीकेंड की नाइट?
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

आपने एंजॉय किया ये गाना और साथ ही में हमने एंड किया है न्यूज का एंड लोकल न्यूज का एंड आज के दिन का ये जो सेगमेंट है ना, अगला सेगमेंट रहेगा बॉलीवुड की न्यूज का जो आप सभी का पसंदीदा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड अब रुख करते हैं बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया की तरफ, जहां से किंग खान शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग को लेकर आज एक बड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट आई है। मेकर्स ने खुलासा किया है कि फिल्म के आखिरी और सबसे भारी एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए अमेरिका और साउथ अमेरिका के लोकेशंस फाइनल हो चुके हैं और पूरी टेक्निकल टीम अगले हफ्ते रवाना हो रही है। मतलब किंग मूवी का जो लुक भी है शाहरुख खान का वो काफ़ी यूनिक है और उसकी चर्चा भी हर तरफ हो रही है। इट्स लाइक मज़ा आने वाला है, मतलब वेट तो सब लोग कर रहे हैं, अब देखते हैं आगे आगे होता क्या है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

0: बॉम बॉम बॉम
1: सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड इंडिया स्टोरी। मैं बता रहा था ना द इंडिया स्टोरी। ओके, द इंडिया स्टोरी के बारे में हमने बात करी थी, टॉपिक भी बहुत अच्छा था एंड काफ़ी हमने कुछ दिनों पहले मैंने जिक्र किया था इस मूवी का। तो कल रिलीज़ हुई द इंडिया स्टोरी एंड आज सैटरडे को थिएटर्स में ये मूवी को बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म हमारे खाने पीने की चीज़ों में कीटकनाशकों की मिलावट के काले कारोबार को उजागर करती है और आज वीकेंड पर दर्शक जो है इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। टॉपिक जो है, मतलब पहले ही कहा था मेकर्स ने कि ये टॉपिक जो है वो आम आदमी को पता चलने के लिए है कि एक्चुअल में प्रोसेस होती क्या है और क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, ताकि जो जनता है वो अलर्ट हो जाए। तो वेल, काफ़ी अच्छी फिल्म जा रही है एंड ऐसे टॉपिक को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस भी समझ चुकी है कि जो रियल कंटेंट है वो देखने में मजा है, ना कि एंटरटेनमेंट में। एंटरटेनमेंट तो ज़रूरी है, लेकिन जब रियल कंटेंट आपके सामने आते हैं तो ये चीज़ें, मतलब ऑडियंस जो है वो धीरे धीरे मज़ा आ रहा है लोगों को, और ये होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। वेल, अगली न्यूज़ है हॉलीवुड से, है ना। हॉलीवुड और हिंदी डब फिल्मों के शौकीनों के लिए ये वीकेंड ब्लॉकबस्टर साबित हो रहा है। मशहूर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की महाफिल्म जो है द ओडिसी भारत के सभी बड़े आईमैक्स थिएटर्स में हिंदी डबिंग के साथ धूम मचा रही है। टॉम हॉलैंड और जेंडिया के दीवाने आज सिनेमा घरों के बाहर लंबी लाइनों में नजर आ रहे हैं, एंड फिल्म का हिंदी डबिंग भी जो है वो कमाल का हो चुका है। मतलब सिंपल और सरल भाषा में कहे तो वीकेंड जो है वो फिल्मों के मामले में धूम मचा रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा।

0: चलो एक कहानी सुन लेते हैं ना। एक गांव में दो भाई रहते थे, जितेश एंड रमेश। जितेश बहुत अमीर था पर परेशान रहता था, एंड रमेश जो था वो गरीब था पर हंसते रहता था। एक दिन जितेश ने रमेश से पूछा, भाई तेरे पास ना धन है ना बड़ा घर, फिर भी तू इतना खुशहाल कैसे रहता है? देन रमेश मुस्कुराया और बोला, भैया आप कल की चिंता में आज की रोटी का जो मज़ा है वो लेना भूल जाते हैं, और मैं आज की रोटी के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करके चैन की नींद सो जाता हूँ। आपकी खुशी तिजोरी की चाबी में बंद है और मेरी खुशी खुले आसमान के नीचे अपनों के साथ बैठी है। कितनी अच्छी कहानी थी, मतलब सिंपल थी, लेकिन इस छोटी कहानी ने बता दिया कि असली सुकून पैसों की गिनती में डेफिनेटली है, बल्कि खुल के जीने में भी है। इसका ख्याल रखना है, दोनों चीजें बैलेंस करके रखना है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरी डे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

0: वेलकम बैक टू एवरीबॉडी। एंजॉय किया आपने गाना। चलिए दोस्तों, खबरों की इस भागदौड़ के बीच थोड़ा सा पीछे चलते हैं और याद करते हैं 90s के वो खूबसूरत दिन। याद है ना, जब स्कूल से लौटते वक्त पॉकेट मनी के नाम पर सिर्फ 1 या 2 रुपए मिलते थे। 90s की किड की बात कर रहा हूँ, रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। और उस 1 रुपए में कंचे, उसके बाद चॉकलेट, देन लाल पीली संतरी वाली कैंडी मिल जाती थी, जिसे खाकर लगता था कि पूरी दुनिया यार अपने इशारों पे नाच रही है। कितनी खुशी मिलती थी ना यार। आज की इस हाईटेक लाइफ में वो रेंट पर वीडियो कैसेट, VCR चलाना, संडे को शक्तिमान देखना एंड सब लोग मोहल्ला पूरा इकट्ठा होता था मूवी देखने के लिए। यार वो सादगी और सुकून वाली लाइफ जो थी वो स्मार्टफोन में भी है, बट 90s इज़ लाइक 90s, ये मैं कहना चाहूँगा। एंजॉय करते हैं यार ये अगला गाना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा। पक्का देसी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो द्वारा पर निर्माण नाइट्स बॉलीवुड की कुछ खबरों के बारे में हम सुन रहे थे, तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है बी टाउन के गलियारों से। आज रणबीर कपूर को लेकर ताज़ा अपडेट आ रही है। आँख के इन्फेक्शन के बाद मतलब सारा कुछ चल रहा था, लेकिन बावजूद रणबीर कपूर दिल्ली के मेगा इवेंट का हिस्सा बने एंड आज इंटरनेट पर रणबीर कपूर की काले चश्मे वाली तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है और फैंस उनके इस काम के प्रति जो डेडिकेशन है, आँख का इन्फेक्शन होने के बाद भी जिस तरह से वो पहुंचे, काम का जो जुनून है उनका बरकरार है एंड मूवी भी, तो यार मैंने लास्ट टाइम VFX के बारे में बात करी थी, तो मूवी जो है वो बहुत अलग लेवल पे जाने वाली है एंड डेडिकेशन, ये मेहनत हार्डवर्क सबको करना जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हो, मेहनत करते हो, एक चीज पे पर्टिकुलर टिके रहते हो, तो मानो कि बस आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

आपने गाना एंड गाना वाकई में था काफी बेहतरीन। कैसे चल रही है आपकी सैटरडे की नाइट? आप सुन रहे हैं रेडियो दायरा पर डेरवादा नाइट्स, मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। वेल, वीकेंड का प्लान तो सेट है यार, मैं क्या ही कहूँ, इतना अच्छा वीकेंड चल रहा है।

लेकिन फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि पानी जो है वो भरपूर मात्रा में सभी ने पीना चाहिए, क्योंकि यार उमस और गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है ना। और मैं कह रहा हूँ यार, लाइक कपड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मौसम के बारे में क्या कहूँ, मौसम गर्मी भरा है सबको पता है, लेकिन वीकेंड का मज़ा तो अलग ही है यार। हमारे जो लिसनर्स है, हमारी जो ऑडियंस है, वो वीकेंड छोड़ती थोड़ी है, तो मज़े कर रहे हो ना, ये मेरा सवाल है। एंड बाकी तो कुछ नहीं यार, एक सेफ डिस्टेंस बना के रखे, गाड़ी धीमे स्पीड में चलाए एंड अपना ख्याल रखे। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का दोस्ती पक्का।

0: एक शेर जो है वो अर्ज करना चाहूँगा। नाकामियों से डर कर रुकना नहीं ए मुसाफिर, नाकामियों से डर कर रुकना नहीं ए मुसाफिर, रास्ते मुश्किल ज़रूर है मगर हौसले से बड़े नहीं। वक्त कैसा भी हो कट ही जाता है दोस्त, मुस्कुरा कर जियो तो ये शनिवार इतवार सब वीकडेज वीकेंड मज़ेदार बन जाएंगे। मैं ये कह रहा था कि अपने वीकेंड की प्लानिंग एंड ये सब चीज़ें ना यार होती रहेंगी, लेकिन खुश रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपने वीकेंड की प्लानिंग कर ली और उसमें भी आपके दिमाग में चल रहा है कि मंडे क्या होने वाला है, ये क्या होने वाला है, तो मत कीजिए प्लानिंग। टू बी फ्रैंक, अगर आपको वाकई में इन्जॉय करना है तो ही प्लानिंग कीजिए, फिर तो आप घर पर भी इन्जॉय कर सकते हैं, है ना। वेल, वक्त हो चुका है अभी मेरे शो को लॉग आउट करने का, क्योंकि 7 से 10 का टाइम एज यू नो कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलते हैं, तब तक के लिए एंजॉय एंड गुड नाइट, टेक केयर, अपना एंड अपनों का ख्याल रखना ना भूलिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

0: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
1: असूरों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो

निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो मजा आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीट्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स.
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा.
1: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
2: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering or family celebration?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices. Crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event. Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors. Experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी, पक्का लोग।

बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स। रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Myra 101.9 FM, Raleigh, Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi.
1: 99.9.
2: आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जान कॉलवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with Geet Bazaar.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे, संडे के संडे। You want music from all countries of South Asia? Listen to Geek

0: टकराएं तो मामूली पत्थर भी बोलते हैं, अरे टकराएं तो मामूली पत्थर भी बोलते हैं, और पत्थर की जुबान वाले भगवान नहीं बोले।
1: ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए आपसे बोले हुए, बातचीत किए हुए। बेशक वक्त ने हमें थाम रखा है कि अगर बोलना भी चाहें तो वक्त नहीं होता। बड़ी मुश्किल से हमें हर इतवार मिलती है, लेकिन ये भी किस्मत की बात है कि हमें हर इतवार मिल जाती है आपसे बातचीत करने के लिए। वी आर योर होस्ट अफरोज़ जान कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। दिस इज रेडियो नायरा की पेशकश गीत बाजार।
2: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
3: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: Charanjit Lal Ji and Kanchan Lal Ji ki farmaish par ye nagma pesh kiya gaya tha. Aur agli jo farmaish hai wo muhtarma ज्योति करीर साहिबा की है, और बहुत खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत नगमा है अपने जमाने का। जिस रंग में मिला दो वो रंग है उसी के। देखिए साहब क्या खूबसूरत बात कहने की कोशिश की है कि जिस रंग में मिला दो वो रंग है उसी के, पानी घटा और बूंदें हिस्से हैं जिंदगी के।

बरसात चाहे जितनी हो पत्थर की जवानी है। अरे बरसात चाहे जितनी हो पत्थर की जवानी है, और पानी की रवानी से ये तेज कहानी है।

बादल के बरसने से ये दिल मेरा कहता है, अरे बादल के बरसने से ये दिल मेरा कहता है, जाऊं कहीं नहीं मैं, गुजरे तुम्हारे पास।

0: बारिश के बरसने से याद आई अब तुम्हारी, बारिश के बरसने से याद आई अब तुम्हारी, आंखें बरस रही हैं, जल थल है मेरी प्यारी। रियाज उर रहमान का कलाम था, अदनान समी की मौसीकी थी और आवाज़ भी अदनान समी और आशा भोसले की थी। वाह, सरगम फिल्म का नाम था, जो पाकिस्तानी फिल्म 1995 में बनी, जिसमें आशा भोसले ने भी गाया। और फरमाइश आई थी मोहतरम जनाब योगेंद्र लाल साहब की कराची से, पाकिस्तान से। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया, मंसूर अनवर का कलाम था, मौसीकी थी निसार बज़मी की, फिल्म का नाम था सच्चाई, पाकिस्तानी फिल्म 1976 में बनी थी, महनाज बेगम की आवाज़ के साथ ही नगमा था। और फिर फरमाइश आई थी मोहतरमा फहमीदा बेगम की, ये आई है मिसिसागा से, ओंटारियो यानी कनाडा से। और इससे पहले वाला नगमा जो आपने समाप्त फरमाया, राज कवि इंद्रजीत सिंह तुलसी का कलाम था, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की मौसीकी, फिल्म का नाम शोर, 1972 की ये फिल्म थी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में ज्योति करीर की फरमाइश पर मानसून का वो वेलकम कर रही हैं, जिसके मौके पर ये नगमा उन्होंने भेजा।
1: एंड फर्स्टली द नेक्स्ट रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम कार्तिक पटेल, ही'd like to hear something in the voice of Mukesh from the 1961 film Sanjog. And Farid the Sheikh also reminded us that it was Mukesh's birthday just a few days ago on July 22nd. And we celebrate Mukesh's birthday by, of course, by playing songs by Mukesh. And Farid the Sheikh ji gave us a number of good selections. We'll be playing more Mukesh birthday songs next week. और अफरोज जी, जो शेर आपने सुनाया था एक बार और सुना दीजिए।
0: बारिश के बरसने से याद आई अब तुम्हारी, बारिश के बरसने से याद आई अब तुम्हारी, आंखें बरस रही हैं, जल थल है मेरी प्यारी।

0: करीब आओ शिकायत नहीं मुझे, अरे कितना करीब आओ शिकायत नहीं मुझे, बेबाक रवैयों की आदत नहीं मुझे। खातिन हजरात, कलाम था A.M. तुरेज का, संजय लीला भंसाली की मौसिकी थी, और फिल्म का नाम था गंगूबाई काठियावाड़ी। अर्चना गोरे की आवाज के साथ ही नगमा आया था मोहतरम जनाब चरणजीत आलियन मोहतरमा कंचन लाल जी की जानिब से। और अब मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा अपना सवाल लिए खड़ी हैं और मुझे दिखा रही हैं कागज में, ये है तुम्हारे इम्तहान का पर्चा। तो पर्चा इम्तहान का क्या है, मैं पढ़ सकता हूँ, मगर आप गा कर सुनाइए अपनी आवाज में, हमें गैस करना होगा कि कौन से नगमे की फरमाइश आप कर रही हैं। अब तो आप मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं, तो समात माइए पूर्णिमा गुप्ता साहिबा की आवाज।
1: रूठी हुई हो तो अब मान जाओ।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा, हजार कोशिशें की तुमने मगर छुप न सके। पूर्णिमा गुप्ता जी समाप्त माही है, देखिए कि ये शेर आपकी आपकी फरमाइश से कैसा करीब है कि नहीं है, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमने आपका इम्तिहान गैस कर लिया। हजार कोशिशें की तुमने मगर छुप न सके, मेरे हुनर से शहर और नगर छुप न सके।

बहुत दिनों से थी वो कैद गुल के साए में, अरे बहुत दिनों से थी वो कैद गुल के साए में, लो फूलों से निकल कर आ गई बहार की खुशबू। खातिन हजरात मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता साहिबा ने जो फरमाइश भेजी या इम्तिहान भेजा, के एल सैगल की आवाज़ थी और कुंदन लाल सैगल की आवाज़ थी और फिल्म का नाम मेरी बहन, माय सिस्टर, उस जमाने में इंग्लिश में भी नाम हुआ करता था, ये 1944 की बात है। पंकज मलिक की मौसीकी और कलाम था पंडित भूषण का। और अब समाप्त फरमाइए मोहतरमा समृद्धि ठाकुर साहिबा की फरमाइश आशा भोसले के नगमे के साथ, और नगमा भी बड़ा चुलबुला है, झूठ वो जिसका नहीं कोई भी जुर्माना। समाप्त फरमाइए कि है झूठ वो जिसका नहीं है कोई जुर्माना, सच वो के जमाने ने जिसे सच नहीं माना।

जो सारे सितारे तुम्हारे हुए हैं। समाज फरमाए कि जो सारे सितारे तुम्हारे हुए हैं, तो शौरा के क्या इस तारे हुए हैं। असद भोपाली का कलाम था। वाओ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी 1963 की फिल्म, जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, पारसमणि। फिल्म का नाम था पारसमणि। लता मंगेशकर की आवाज में मोहतरमा फरीदा शेख साहब, आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर, जैसे कि अगली फरमाइश आपकी किशोर कुमार की आवाज में। वाह, फिल्म का नाम हम सब उस्ताद हैं, 1965 की ये फिल्म है। अगर प्यार बांटो तो ये सोच लेना। कभी आपने सोचा है, कह तो देते हैं आपके प्यार को बांटो ये वो सब, लेकिन ये नहीं सोचते, अगर प्यार बांटो तो ये सोच लेना, मिले सबको प्यारे बराबर का हिस्सा। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

खुशबू भरे शिकारे डल लेक की नदी में। आप जानते हैं कि डल एक झील का नाम है श्रीनगर में। खुशबू भरे शिकारे डल लेक की गली में, सौरंग भरे हुए हैं कश्मीर की गली में। इस पर मुझे फिल्म जंगली का वो सीन याद आ जाता है जिसमें के हीरो साहब नाराज़ हो जाते हैं, यानी के शम्मी कपूर और हीरोइन जिनकी पहली फिल्म थी सायरा बानो, वो उन्हें मनाती हैं और वो नाराज़ होकर आगे बढ़ते जाते हैं। 1961 की फिल्म थी जंगली, जिसका ये नगमा है।

इसी फिल्म का एक और नगमा आप समाप्त फरमाएं। इसके बारे में ये कहा जाता है, पता नहीं कहां तक सच है क्या है, कि किसी हिंदुस्तानी शख्स ने ये नाम चुना yahoo.com क्योंकि उनके पिताजी को जंगली फिल्म बहुत पसंद थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई इसका नाम याहू रख दो, याहू।

पागल सा हो रहा हूँ कश्मीर देखकर। समाप्त फरमाएं कि पागल सा हो रहा हूँ कश्मीर देखकर, ना देखे हुए ख्वाब की ताबीर देखकर।

0: दिल में।
1: मेरे दोस्तों, फिल्म जंगली में जो एक नगमा था, मैं कश्मीर की कली हूँ मुझसे ना रूठो बाबूजी, उसी नगमे की लाइन पर एक और फिल्म बनी जो शायद 3-4 साल के बाद कश्मीर में, इशारों में कैसे किया शहर दिखा। अरे इशारों में कैसे किया शहर दिखा, और दिल ले लिया है कैसे अपना हुनर दिखा।

वापस आना एक बहाना, अरे वापस आना एक बहाना, इसे कौन ठुकराएगा। अरे वापस आना एक बहाना, इसे कौन ठुकराएगा। और प्यार से जो आवाज लगाए, कौन भला रुक पाएगा। यू आर लिसनिंग टू गीत

दोस्तों ये तकरीबन 70s की बात है कि जब हमारा इंडिया में एक बैंड हुआ करता था और हम उसको चलाते भी थे और मैं उसका ओनर नहीं था, लेकिन ये बड़ी पुरानी बात है, अंडरग्रेड था मैं अलीगढ़ में ही। तो हमारे दोस्तों ने सबने डिसाइड किया कि कश्मीर चला जाए, क्या ख्याल है, और सबने चुना कि अच्छा अफरोज को पहले भेजो और वो तैयारी करे। तो खैर एनीवे तो मैंने हाँ कर दी और सब ने अलीगढ़ से मुझे ट्रेन में चढ़ा दिया। वहाँ कश्मीर के रास्ते में एक मैंने गीत लिखा जिसकी धुन बनाई और खुद ही लिखा। आए थे कश्मीर सोचा दिल बहल तो जाएगा, अरे आए थे कश्मीर सोचा दिल बहल तो जाएगा, और थे अकेले पहले से अब और अकेले हो गए।

हंस खेलने की जिंदगी रोकर गुजार के, अरे हंस खेलने की जिंदगी रोकर गुजार के, जब तक बड़े हुए गए दिन भी बाहर के।

1975 की बात है, एक फिल्म आई थी आपकी कसम। उस जमाने में मैं अंडरग्रेड था और नई नई हमारी किसी साहिबा से दोस्ती हुई थी, नाम नहीं लूंगा उनका। तो उसका वो गाना हमें खींच लाया फिल्म के अंदर, फिल्म देखने के लिए। ओह, पहली बार किसी लड़की को अपने साथ लेके जाने का एक अजब ही फीलिंग होती है, एक अजब ही बचपने की उमंग होती है जो हम फील नहीं कर सकते। और पहली बार मैंने किसी के लिए अपनी जेब से टिकट खरीदा और समोसे दिखाए। ऑफ कोर्स यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

इस बाग में आया है काले स्याह भंवरे, समाज फरमाए किस बाग से आया है काले स्याह भंवरे, दिल जीतने से पहले तन को न हरा दीजो।

1965 की फिल्म जब जब फूल खिले का एक मंजर बहुत अच्छा है कि नंदा जो है यानी हीरोइन फिल्म की नंदा हाउस बोट की छत पर एक गाना फिल्मा रही थी, अभी प्रैक्टिस चल रही थी आंखें बंद करके। तो उसमें क्या हुआ, उस फिल्म का हीरो जो मल्लाह था हाउस बोट का, वो छुपके उसकी एक्टिंग देखना चाहता था। तो देखने के लिए उसने सीढ़ियों में से दूसरी सीढ़ियों से निकल कर आया और बिल्कुल उसे छुपके बैठ गया। लेकिन जैसे ही गाना ख़त्म करके उसने निगाह डाली तो एकदम से उसे सरप्राइज हुआ, और आप उसे देख सकते हैं फिल्म के अंदर भी। बल्कि डायरेक्टर ने कहा जाने दो कोई बात नहीं।

इसी फिल्म का मंजर, शशि कपूर का और दर्द भरी आवाज मोहम्मद रफी की और दर्द भरे हमारे गीत बाजार लिसनर्स में से एक दामोदर पांडे बनारस रामनगर से इसकी फरमाइश भेज रहे हैं। इस नगमे की दो लाइनें मैं कभी नहीं भूलता हूँ, बागों में जब जब फूल खिलेंगे तब तब ये हरजाई मिलेंगे, लेकिन हम तो आपकी मोहब्बत में लौट के आएंगे, हमें हरजाई ना कहना क्योंकि हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं।

0: Hi, Carrie. Get ready for Dosa Bundi. Discover our signature variety dosas, including colorful carrot dosa, beetroot dosa, and more. Made with fresh natural vegetables and packed with flavor. Refresh your day with our cold-pressed juices and enjoy our delicious sandwiches made with fresh vegetables, paneer, and homemade sauces. At Dosa Bundi, every dish is carefully prepared with fresh ingredients to nourish your body and delight your taste buds. Join us every Saturday and Sunday from 8:30 a.m. to 2 p.m. and Wednesday through Friday from 5 p.m. to 10 p.m. We look forward to welcoming you
1: to 4101 NC Highway 55, Cary, North Carolina 27519.
2: Dosa Bundi, authentic flavors, inspiring journeys made with love.
3: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक। प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड। वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री। एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM to 10 PM मंडे टू संडे। तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए। 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल। कॉल करें 9842540111। रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए।
2: 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी, पक्का लोक।

0: पिकअप विद द कोन्स एग्जिट कैटरीना कैफ टू जॉइन प्रभास इन स्पिरिट. लेट्स फाइंड आउट. This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And Katrina Kaif is reportedly being considered for a special appearance in Prabhas Spirit, directed by Sandeep Reddy Vanga. According to the industry reports, the actor is being eyed for a crucial cameo that could become one of the film's biggest surprise elements. And finalize the project would mark Katrina Kaif's return to Telugu cinema after nearly 21 years. However, neither Katrina nor the makers of Spirit have officially confirmed the reports. Stay tuned for more. I'll be back only on Naira.
1: मैं दगड़ू हुईगुंड इंटरपोल से. जो सबसे गंदा फुगड़ी खेलेगा वही किलर होगा. आओ फुगड़ी डांस करे.
2: भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू. भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक मी एंड आई लाइक यू टू. भाई फू फुगड़ी फू यू लाइक.

0: काही फुलझडी से तुने भरेले पॉकेट. अरे वारा बन मेरे जाई सबन, येले नाना का बॉम्ब जाके उडा दे घर.
1: Fugadi Poo, you like me and I like you too. Oh bhai Poo, Fugadi Poo, you like me.

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna & Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback, easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna & Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us at 9193883.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक इन चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो
0: 101.9 FM 99.9 FM SD4 4090 AM पक्का देसी पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: ये इतना आसान नहीं होने वाला, ना ही ये जल्दी पिघलने वाली। तो ठीक है मैडम, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम।
1: सेलफोन
2: चेक,
1: मेकअप
2: चेक,
1: जूस
2: चेक,
1: इडियट
2: चेक,

wanna run the race like me. गुड इवनिंग टू एवरीबडी, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम आपके मनपसंद शो में जिसका नाम है निर्वाणा नाइट्स। और पूरे वीक भर आपकी जो भाग दौड़ है वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वीकेंड आ चुका है। अब वक्त है थोड़ा रिलैक्स करने का और अच्छे गाने सुनने का और ढेर सारी बातें करने का। आज के शो में हमारे पास आपके लिए लोकल खबरें हैं, बॉलीवुड का तड़का है और हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इस एंटरटेनमेंट की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कहीं जाइए मत, अपनी सीट बेल्ट अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बांध लीजिए, आपके घरों में है तो आपने ट्यून इन किया है रेडियो नायरा एंड 3 घंटे मेरे साथ। अब आपको करना है बस एंजॉय, सारी थकान सारी टेंशन जो है वो साइड में रख देने की है एंड सुनना है आपको ये पहला गाना जो कि मैं प्ले करने जा रहा हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।

0: Not every restaurant becomes an experience, but Soul Flavorscape of India is a journey through taste, tradition, and unforgettable flavors.
1: From crispy Delhi-style aloo tikki chaat, flavorful samosa chaat, to the signature Soul Dal Bukhara.
0: Enjoy fresh sizzling veg and non-veg starters paired perfectly with oven-fresh chur chur naan made with love and fresh ingredients.
1: Planning your birthday, wedding, graduation party, corporate gathering, or family celebration?
0: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
1: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
0: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
2: आज का प्लान क्या है? सेम रूटीन या कुछ थोड़ा स्पेशल? मॉरिसविल में अब ओपन है रच्चा बंडा फूड ट्रक. प्योर वेजिटेरियन, फ्रेश, लाइट और बिल्कुल फील गुड फूड. वॉक एंड चिल स्पेस, ह्यूज पार्किंग, नो स्ट्रेस, इजी एंट्री. एवरीडे ओपन बिटवीन 5 PM टू 10 PM, मंडे टू संडे. तो दोस्तों को बुलाओ, चाय पे मिलो और बनाओ छोटी छोटी यादें जो याद रह जाए. 3611 डेविस ड्राइव, मॉरिसविल. कॉल करें 9842540111. रच्चा बंडा, एक बार आए तो रोज आए.

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

वेलकम बैक टू एवरीबडी। एंजॉय किया आपने गाना? गाना वाकई में काफ़ी बेहतरीन था, जिसने ये संडे की वाइब जो है वो सेट करके रखी है। शाम का वक्त ऐसा होता है कि जब दिल चाहता है कि बस एक कप गर्मा गर्म चाय हो और बैकग्राउंड में अच्छे गाने चल रहे हो। आरडीबी के हमारे जितने भी दोस्त इस वक्त गाड़ी चला रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं वीकेंड का, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कृपया आराम से ड्राइव करें, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वीकेंड है यार। ना आपको किसी ऑफिस में जाना है, ना किसी क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग है, बस आज का दिन जो है वो अपने लिए एंजॉय करना है, तो रिलैक्स तो करना बनता है। एंड आज रास्ते में ट्रैफिक, वीकेंड है तो ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत है, लेकिन ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। गाड़ियों के साथ एक सेफ डिस्टेंस रखना है और उन टॉक्सिक पीपल के साथ भी, लोगों के साथ भी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। तो चलिए अपने मूड को रिफ्रेश और करते हैं एंड एंजॉय करते हैं अगला ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4, 101.9 एफएम एंड 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी।

रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड एक बहुत ही बड़ी और मज़ेदार खबर आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। आप इस वीकेंड रैली कॉन्वेंशन सेंटर की तरफ गए होंगे तो आपने बहुत सारे लोगों को अजीब और खूबसूरत कॉस्प्ले ड्रेसेस में देखा होगा। जी हाँ, गैलेक्सी कॉन रैली वापस आ गया है और इस बार यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इससे हमारे लोकल होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानों का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और अगर आप भी सुपर हीरो या कॉमिक्स के दीवाने हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। और मतलब इतना मज़ा आता है ना ये फेस्टिवल में, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बहुत, आप अगर शौकीन हैं इन सब चीज़ों के, कॉमिक्स और ये सब चीज़ों के, तो ये आपके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

0: जी हाँ, एंजॉय किया आपने गाना। गाना काफी बेहतरीन था। एंड गाने के बाद आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से वेलकम। निर्वाणा नाइट्स हमारा शो रेडियो नायरा पर चलता है, एंड शाम का वक्त हो और थोड़ी शायरी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, वो भी वीकेंड एंड मौसम भी इतना सुहाना। आज की पहली सिंपल शायरी हमारे उन दोस्तों के लिए जो किसी की याद में खोए हैं। तो अर्ज करना चाहूंगा, आंखों में छिपा के रखा है ख्वाब तुम्हारा, आंखों में छिपा के रखा है ख्वाब तुम्हारा, दिल में बसा के रखा है प्यार तुम्हारा। दुनिया की इस भीड़ में खो न जाना कहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ चाहिए साथ तुम्हारा, हमें तो सिर्फ चाहिए साथ तुम्हारा। इसी प्यारी शायरी के साथ यार, आपको अगर किसी की याद आ रही है, किसी के साथ बात नहीं हुई है, तो यार एक सिंपल सा टेक्स्ट कर दो, कितना ही टाइम लगता है। एंड एंजॉय करो रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का।

शायरी के साथ अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो बेझिझक उन्हें आप टेक्स्ट करो, डेफिनेटली रिप्लाई आएगा ही आएगा। दोस्तों अब थोड़ा मौसम और रास्तों का हाल जान लेते हैं। पिछले एक दिनों से हमारे पूरे ट्रायंगल एरिया रैली धरम और चैपल हिल में बहुत भारी बारिश हुई है। कुछ जगहों पर तो 3 से 4 इंच तक पानी गिर चुका है, जिसकी वजह से पेड़ गिरने और बिजली जाने की खबरें भी आई है। तो अगर आप अभी रास्ते में हैं तो पानी से भरे रास्तों पर गाड़ी धीरे चलाएं और अपनी हेडलाइट्स ऑन रखें, अच्छे से सेफली ड्राइव करें। अपनी सुरक्षा जो है वो सबसे पहले है। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स 7 से 10। मैं रहता हूँ आपके साथ, मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है, याद रखिएगा, आरजे पराग। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 FM 1490 AM रेडियो नायरा पक्का।